0: क्लास तुम कुफा भी
1: ती हमने रसोम नी तबका लू ती मंदी केल ती तबका ती मंदी केल तबका ती मंदी केल ती निवाले फितु लपन लकान रन समाई ता फाउला ने मिचा वचले चिर का पोका रन सारे नाम ले उली सना लाव सो ओजो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरंभ ये फमिशा चाहूता का मिचो याद का पोका वो तेसामी फाउला ने ताल ले फितु लपन लकान अब शो ए अमान ले तेले स्टार्स पची मानम ले वे चिरामान तो कुन्या पीन पीछ ये सन तार ने यम नुलना अम्नि अमानन ले उलना रतिले स्टार्स फाइ चिर का पोका वे फाउलन तो कुन मंदिंग क्या मिचो माला काश मन लोना से साबन मिचा हम सो वचन ने कि तोफ तो वना ये चिरु अम्नि ता जावना तुम सुसु वे तिरा तिरा वे मंगो मना सो फोक सेम फन मिलना तुल चिर तु पतु कुम तुंगा सेनल ले माला काश मन लोना से साबन मिचा ये चिरु सांवेनी तांड सर्वे अमानन नुलन चिरामान सोए

0: पकारा।
1: तुम क्लास तुम कुफाफी
2: लिफतिन म्या कट बे तफी टिंडांग दिम्याल ततनन इजो जो हम जोफतन जो मैं फेओ फोए साजी दिरंग सुन कोई जिमनास मेने अंद्रजोल ना मसाइक नहीं जीव आशा इज दिन पेचान मुलम जोरो चका छेन जो म्या कट बे रान पने फता लुले उलती जाने रंजान माएरा कुरंजान काजमांग मुद ओम जिमनाजो ने फी जान फमा इन फेओ फेओ ते तुम तनानो वे साजी दिरनो सुन तिन मिसो वे तमने पेशन जिमनाजो विस्ता जी जीरनो सुन ना दे बेरन दायदार गो लेन मुलो तुम बुरन दाला नेंग न ते फपिन फपता देन ना वेम ता चंग जे मलाला दाला कान ले लाला न्यूज ने ते नई तम वोलोनी जिंजा आनम सानी फेरन ने फान बुतुच ने करन न मरन चंग उनो दे तान प्रे दानी फुक्तान पंग जाबा जाबा तान साइक जे रंग जेनो वे फम कनालियान फकेल दिस्ता फोकांग लेरन
3: तुप चाने जाम बाना नु चाले ने बले तुतु फने तुच न्याका छया लेरा फसरो तेला मानम बोचा ले लालन Teneva ne poav nigora te tu celle savatana ton sario. Nevani seva manda un fulan panambana ni la lana kelio. Teneva mia casa peste a tati ambalan, la se fukel mlante etom nemitela batena rampe. Te mukula canetiam nena crede fandimbia sana pi. Mitinema le ulla macapiera te metiena te mias. Tan fifuala muteneva putketa terra camincena tafna falafara. Te mia casa te tazi vocana. Era samano va feseria lavza per indeneva nene wala nemnyara pembola lavza ne eto mono va fesero nzat neta eta xosa embovem kavana rela lanzam fam tsal se ati ambantana na se futsin san neta eta
1: shota tumkula shota tumkuva